0: तातै निपोरा हेर्मानो मिगेल नगुरगस पुरी वेरेका चाहिँ उसै थियो कि पाका जा निपोरा खाइन वेन चेरी सुइजतेन निप्सकारा तियाइता सिनोरान तिया खानिता अबेर खानिता निप्सकारा अपाम पाइ वाली है प्रेपारा पाइ प्रेपारा प्सकारा वाली खान चुरा सकारा कामा सा पा चुरक सकारा सु कामी सब लांगुत सापातुस नीन चांतक सकारा इतियक सुयक सकारा पातियु तिया सकारा Matias kagak dia kuantah apa? Icha sekarang sukuna, nip sekarang kurang kes, kamu ik dong rokel di kam suapa ik kabrat, pusa minti.
1: Red TL, una emisora de Mariati Medios de Argentina.